World Inco festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps internet और net TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box मात्र ₹12 प्रति महीना में सर्थ लागू होने चाहिए। छिटो बने गई World Inco।

एलजी ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी लाइफ्स गुड।

0: हेलो।
1: आज रमाइलो भयो नि त?
0: रमाइलो हो,
1: मजा आयो नि।
0: मजा आयो।
1: अनि म कस्तो नाचेँ?
0: स्वाग
1: हो र।
0: अनि अनि भन,
1: तिमी त झन् डबल च्वाक।
0: वाउ हो र।
1: हो नि।
0: ओ, धेरै छिपिसक्यो, बुवाले मार्नुहुन्छ। जाऊँ है।
1: ल जाऊँ।

0: दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक आवाज।
1: ओएसआर डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन।

Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps international net TV. साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box. मात्र रु 12 से प्रति महीना में. शर्तहरु लागू हुने छन्. छिटो भनेकै Willingo.

0: सामुदायिक रेडियो जलजला एफएम 96.4 MHz। जलजला टाइम चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको 4 बज्यो।
1: यस टाइम चेक का प्रायोजक दीर्घायु हस्पिटल प्राली तिलोतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही।

0: एकुलागी सामुदायिक रेडियो जलजला एफएम 96.4 मेगाहर्ज जलजला ट्रैक चेक यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बेलुकीको 5 बज्यो।
1: यस टाइम चेकका प्रायोजक दीर्घायु हस्पिटल प्रणाली तिलोतमा 5 मडिग्राम

0: के थैली खई चौबंदी माँ तूने कुसुर के थैली खई
1: मन मोजी मंची कत कत जंची खुज निंदा न गर

अलिसा, तिमीलाई थाहा छ नि है, म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर। यो कुरा चाहिँ गोप्य राख है।